0: चिनी त मेरो प्राण हो नि, मैया चिनी बिना जिन्दगी कहाँ चल्छ र?
1: चिनी भए नि हामी एक हुन सक्दैनौ के रे?
0: ल किन के रे फेक्छ र?